अंदर झूठे पै जबा दुनियंदर फैल, अठ सठ तित जे ना वै उतरै ना ही मैल, जिन पट अंदर बाहर गुदड़ते पले संसार, तेन निहलग रब सित देखड़े विचा, रंग हसै रंग रोवै चुप पी कर जाए परवाना, किसे करे बा सच नाए, दरबार तो पर खर्च मंगा जब देता खाए, दीवान को कल में कहा मत ममे, डर लए लेखा पीड़ छुट्टे नानका, जो तेल पड़िया पे कड़ा कुकला पे धारी है, देखे किता अपना तर्क ची पक्की सारी है, जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी है, जिसके जे प्राण है क्यों सब नो सारी है।

सतनाम कर्ता पुरुष निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी शैवं गुर प्रसाद बलिहारी गुरु अपने

मैं तान दी मान तू है मेरे स्वामी मैं तुद आगे अरदास मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती मेरा दुख सुख तुझी पास सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म हस्त काया रखिया जगदीश्वर है आत्म रखिया गोपाल स्वामी तन चरण रखिया जगदीश्वर सर्व रखिया गुरुदयाल है दुख विनाशन है।

छाड़ बिखै बेखाई माया मोह परम पै भूले सुत धारा स्यों प्रीत लगाई।

बोला। जुगो जुग अटल, चवर शतर तखत दे मालक, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी, तिन्हां दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर गुरद्वारा दुख निवारण साहिब पावन स्थाना उपर जुड़मिल बैठे गुरु प्यार वाले सतगुरु जी ने अपार बख्शिश कृपा वरताई है। जो अपने पावन चरणा कमलां पास जुड़ के बैठन दा सुभाग सतगुरु गुरु बाबा जी ने बख्शिश कीता है। आओ गुरु प्यार वाले हो, जो तन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी दियां लड़ीवार विचारां चल रही ने, उन्हां चल रही लड़ीवार गुरबाणी विचारां दे नाल सांझ पाइए। विचारां दी आरंभता तो पहलां सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करन अपना रहमत भरिया हथ सिर ते रखण। सतगुरु आप रसना उत्ते वरत के पावन शब्द गुरबाणी दी विचार साहिब आप करवा लैण और आप सरबत संगत असीस बख्शो। कोई रसना वांझी ना रहे, दोवें हथ जोड़ अपनियां मन बिरतियां एकागर करदियां लवाओ गुरु चरणा विच हाजरी। अदब सहित सरबत संगत मिल करके उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। एक बार फिर करो रसनावां पवित्र और मिलके आखो जी सतनाम श्री

फिर अगलिया पंक्तियां च कहिंदे धंदा रोवै, किनू रोया, धंदा रोवै मैल ना धोवै। जिन्ना मर्जी रो लो धंदिया नू, मैल थोड़ी लथनी है। सुपनंतर संसारो, ते की रोण वाला नहीं जानता भी सुपना ही है संसार। रोण वाले नू नहीं पता भी जिन्हों असी रो रहे हाँ वह चले गया, कल नू असी भी जाना है। रोण वाले नू भी ते पता ही है ना। जिवें मालक जी ने जिक्र करदे आख्या ना भी तू कहिंदे तुरिया जाना रोण वास्ते, तू तुरिया जाना, कहिंदे तू दस कल नू तेनू रोण कौन आएगा, हमको कौन रोई, कौन आएगा रोण, तू दावा कर सकते तू ते रोण तुरिया जाना, कल नू तेनू कोई रोण आएगा, इहदा की दावा है। जे रोना ते अपने आप नू आप रोया कर, अपने आप नू ज्यौंदियां जी रोईए भी कुछ सवार लिए, रोना ते आ सी अही मरण तो मगरों रोन लग गए। जबकि बाणी ने ते सानू स्पष्ट, धन गुरु अमरदास पातशाह ने स्पष्ट किया, जेड़ा जीव चले गया उहदे जाण मगरों रोना नहीं, मत मैं पिछे कोई रोग सी सो मैं मूल ना पाया। धन गुरु अमरदास पातशाह भी मेरे जान मगरों कोई रोयो ना, जे कोई रोवेगा वह मैनू मिल बिल्कुल भी चंगा नहीं लगना। स्पष्ट गुरु साहब ने कहते शब्द भी जान पिछों रोना नहीं। भाई इसे तरह जीव है, पता तो सानू भी है भी अटल सच्चाई है, रब का हुक्म है, रब की रजा मननी पैनी है, असी रोई जाइए उहदा लाभ की है। किसे दे रो कोई साडे लई रोएगा ये ना सोचो, अपने लिए आप रोना शुरू कर लो। साडा भोग कोई पावे ये क्यों, साडे मगरों बाणी कोई पढ़े ये क्यों, अपने ज्यौंदे जी आप पढ़ लो वह चंगी नहीं है। मरण तो मगरों साडे नमित पढ़ी का लाभ सानू थोड़ी मिलना, मरण तो मगरों साडे नमित पढ़ी का लाभ उन्होंने मिलना है जिन्हां ने पढ़ी है, उन्होंने मिलना है जिन्हां ने सुनी है, ना असी सुनी है ना पढ़ी है, सानू की मिलना, सानू कुछ नहीं मिलेगा। जे लाभ मिलना इस गल का मिलना है अपने मरण तो पहला तू किन्नी क पढ़ी है, इस गल का मिलना लाभ एदा ही मिलना ना भी तू जीवन में किन्नी क पढ़ी है। भाई तेरे मगरों तो हो सकता अगले आए साल कहन भी अं तो बापू के नमित भाई समागम भी करना, अं बापू के नमित अखंड पाठ साहब भी करवाना, अं बेबे के नमित सहज पाठ भी करवाना, अं हर साल कराने कराई जान, उहदा लाभ उन्हों मिलना जिन्हें सुन लेना, उहदा लाभ उन्हों मिलना जिन्हें कर जाना, उन्हों नहीं जिदे नमित कराई जा रहे हैं, कराई चलो हर साल। कर्म माड़ा नहीं, बाणी का आसरा लेना माड़ा नहीं, पर एक फॉरमैलिटी ना रखो, वो जे अहीं कर्म कर रहे हैं तो फिर उहदे विच साडा फर्ज ये बनता अहीं बाणी आप पढ़ीए आप बाणी सुनीए, फिर तो लाभ सानू मिलेगा तो जिहड़ा बह के सुन ले उन्हूं मिलेगा। इस तरह गुरु साहब ने कहा कहिंदे भाई रोवै माया मुठड़ी तंदड़ा रोवण हारेवा, तंदा रोवै मैल ना धोवै सुपनंतर संसारो। संसार ते सिर्फ एक सुपना ही है, अत्यंत मिथ्या ही होया है, एदे तो बिना कुछ भी

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथमा भगवती सिमर कै

लगा कित को फकड़े सब मुकदी चली रहना फरीदा बुरे दा पला कर गुस्सा मन ना हंडाए देही रोग ना लगई पले सब किछ पाए फरीदा जो तै मारन मुक्कियां तिना न मारे कुम्मा

हमें अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई।

जीवो नाम सुनी जाओ सो प्रसन्न पए गुरपूरे तब मेरी आस पुनी जीवो नाम सुनी जाओ सो प्रसन्न पए गुरपूरे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की।

0: है मुश्किल होवे अति भारी हर को नाम की माहे उधारी
1: अनुपने चरण करतनी करे हर को नाम कोट पापर हरे
0: मुख नाम जपू मन मेरे नानक पाओ सुख घनेरे
1: कल श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया
0: करोरी बंद न पर हर का नाम जपत निस्तर
1: अनुपमा रंग तिख न बजावे हर का नाम जपते अगावे
0: मार्ग जात अकेला ते हर नाम संग होत सुहेला
1: ऐसा नाम नसदाती ये नाना गुरमुख प्रमगत पाइये
0: गत नहीं कोट लख बाही नाम जपत ते पार पराही
1: अनुपद गंज आए संगारे हर का नाम तत्काल उदारे
0: जोन जन में मर जाम नाम जपत पावे विश्राम
1: मला मल कबू न तो वे हर का नाम कोट पाप खोवे
0: नाम जपू मन रंग नानक पाई साध

0: जहाँ त्रिखा मंद दया करके ते नानक हर हर अमृत बरके।
1: जना की बर्तन नाम संत जना के मन बिसरा,
0: हर का नाम दास की ओट हर के राम दरे जन को।
1: करत संत दिन रात हर हर अवखद साध कमा,
0: हर दिन के हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नो दाओ।
1: रंग रते रंग एक नानक जन के बिरत विवेक।

0: भोग जोग हर नाम जपत कछ नाही वियोग
1: बिंदत हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा
0: हर जन के माल का जीना हर धन जन को आ प्रभु दीना
1: हर हर जन के ओट सुखानी हर प्रताप जन अवर न जानी
0: पोत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते
1: आठ पैर जन हर हर जपे हर का भगत प्रगट नहीं छपे।

0: पर जो बन भोजन सुख सुद
1: प्याऊ पसाक सैन मुख प्याऊ बैठ को दैन
0: निर्गुण गुण कछु न बुझे बख्श लियो तो नानक सीजे।

0: सब काम जो कीर्तन के निरारत
1: कटवस्योर नाम नानक पाके बल बल जाओ
0: अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखू गंडला
1: जानन।

0: जे प्रसाद संसग बसना पैर सिमरत रसना
1: जी प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याये ध्यावन जोग
0: जे प्रसाद पाठ ब्रह्मंडावे जे त्यागत अवर लोभावे
1: सासुख से सोई जय मन आठ पैर ताका जस गावे
0: जे प्रसाद सबको मन ने मुक्ता को जस रसन बखाने
1: प्रसाद तेरा

0: तिसका ध्यान
1: हे प्रसाद तू चार बिहारी तिस प्रभु को सच तारी
0: हे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप
1: जय प्रसाद त्रिनिकी जा सो प्रभु।

0: जहि प्रसाद भोले अमृत रसना, जहि प्रसाद सुख सहजे बसना,
1: जहि प्रसाद हस्त कर चले, जहि प्रसाद सुपूर्ण फले,
0: जहि प्रसाद परम गत पावे, जहि प्रसाद सुख सहज समावे,
1: ऐसा प्रभु त्याग अवरकत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो,
0: जहि प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभु को मूल न मनो विसार।

0: सार के संगमुख उजल हो, सार संग मा सग लिखो,
1: सार के संग मिटे अभिमान, सार के संग प्रगटे सो ज्ञान,
0: सार के संग बुझे पम नेरा, सार संग सब होत नमेरा,
1: सार के संग पाए नाम।

0: पलायन साध संग अमृत गुण गायन
1: साध के संग सर्वथान गम नान साध के संग सफल जन्म
0: साध के संग नहीं कछ काल दर्शन भेटत होत निहाल
1: साध के संग लोक धर साध के संग नरक पर हर।

0: दृष्ट समान जैसे राज रंग को लाग तुल पवान
1: ज्ञानी के तीर जो बस्ता को खोदे को चंदन ले
0: ज्ञानी का यह गुना।

0: से धरु पर आकार ज्ञानी उच ते ऊंचा मन अपना है सबते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन पाए नान।

0: ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मन,
1: ब्रह्मज्ञानी जिस करे प्रभया ब्रह्मज्ञानी का बड़ परता,
0: ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल,
1: ब्रह्मज्ञानी को खोज महेश्वर।

स्वरूप उस्तद करे अनेक जन अंत न परवार नानक रचना प्रवरची बहु विधि अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पूजा।

0: करते कांत न पावे।
1: कई कोड़ पै अभिमानी, कई कोड़ अंध ज्ञानी।
0: कई कोड़ कृपण कठोर, कई कोड़ अभिज्ञातम निको।
1: कई कोड़ पर धर्म को हीरे, कई कोड़ पर दुख ना करे।
0: कई कोड़ माया श्रमाए, कई कोड़ परदेश।

0: कछु ने आवे तिस तत्काल दे तिस प्रगटावे।
1: जा को अपनी करी बख्शी ताका लेखन गणे जगदीश।
0: सब तिस की रात घट घट पूरन ब्रह्म परगा।
1: अपनी बनदया बनाई नानक जीवे देख बड़ा।
0: का बल नाही इस हाथ करन करावन सरब को ना।
1: अग करी बपरा जियो जो स्वाभि सोई फनथियो।
0: कभू सोग रंग रंग हसा।
1: कौन निंद चिंद व्यवहार कबू बकास पिया।
0: बेटा ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार।
1: कौन नित करे भोपाल कबू सोए रहे दिन रात।
0: महाक्रोध विकराल कबू सर्व की हो तरवा।
1: कबू होए बहे बटर।

0: जतन कर आत्म नहीं द्रव हर दरगे को कैसे
1: गो जो भला कहावे भलाई निकटने आवे
0: सर्व की रेन जाका मन होए को नानक ताकि निर्मल
1: जब ल जाने मुझे कुछ होए तब इसको सुख नाही कोई
0: जब ए जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन में फिरता
1: जब तारे को बैरी में तब लगने चल नाही थी
0: मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजा
1: तब कृपा ते बंधन टूट गुर प्रसाद नानक हो छूट
0: हस खटे लको उठ धावे त्रिवत नावे माया पाछे
1: पावे।

0: संतन के दुखन सर्प जौन पाए, संत के दुखन तिगत जौन किरमाए।
1: संतन के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सब को छले।
0: संत के दुखन ते सब जाए, संत के दुखन नीच निचा।

0: संत के दोखी को सब ते अग्गे,
1: संत का दोखी महंकारी, संत का दोखी सदा भिखारी,
0: संत का दोखी जन्म में मरे, संत की दुख ना सुख ते डरे।

0: एक बचने तुझ कियो सो जी जाने
1: संग जिसका मन माने नानक तिने निरंजन जाने
0: गुर प्रसाद अपने आप सजै की जानो तृष्णा भजै
1: साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओ हर जन रहत
0: अंधन कीर्तन के।

0: हर गुण गाए अमृत रस चाखे
1: ओट गए संत कर आया सर्व सुख नानक ते पाया
0: को जीवालन हार भूखे को देवत आधार
1: सर्व निदान जाके दृष्टि माहे प्रभु लखे का लेना पा
0: करने जोग तिस बिंदु सर हो।

0: अष्टपदी
1: चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार
0: दर्शन सत सत पिकनहार नाम सत सत अवनहार
1: सत सत सब धारी आपे गुण आपे गुणकार
0: शब्द सत सत सब वक्ता सुरत सत सत जसंता
1: जनहार कौ सत सब होए नानक सत सत रब सोए
0: सत सुरु दे जिन मन्या करण करावन तिन भूल पछान्या
1: करि दे विश्वास प्रभ आया तत ज्ञान किस मन प्रगटाया
0: तिन पोहे प्रसन्ना जिस ते उपजिया समय समन्ना
1: माहिले बस्त गडाई ताकौ बिना कहना जाई
0: जे बुजनहार बवेक नारायण मेरे नानके
1: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पूजा
0: ठाकुर के सेवक के मन प्रति ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
1: ठाकुर को सेवक जानने संग प्रभ का सेवक नाम कह रहा
0: सेवक को पालन हारा सेवक की रखन रंकारा
1: सेवक जिस दया प्रभ धारे नानक सो सेवक साथ साथ समा
0: अपने जन का प्रदाता के अपने सेवक की सरपा

0: सिखी गुरमत मलहरे गुरबतनी हर नाम त्रे
1: गुरु सिख के बंधन काटे गुर का सिख बिकार ते हटे
0: सतगुरु सिखो नाम धंदे गुर का सिख वट भागी है।

0: संत जन मिल कर बीचा एक सिमर नाम धार
1: विसारो चरण कमल उदारो
0: कर्ण कांसो प्रभ समरथ देख गौ नाम हर बथ
1: संचो हो भगवंत संत जना का निर्मल मंत्र
0: एक आस रखो मन मान।

0: अष्टपदी
1: याचक जन जाचे प्रवदान कर कृपा देव वरना
0: साजन की मंग तुर पर ब्रह्म श्रद्धा पूर
1: प्रभ के गुण गाऊं साथ साथ प्रभ तुम्हें दिया
0: चन कम सो लागे पीत भगत करो प्रभ की नंदनी
1: एको आधार नानक मागे नाम प्रभ
0: प्रभ की दित महासुख होए अर्थ पावे बिल्ला कोए
1: जाके ऐसे जन तृप्ता ने पूरन पुरक नहीं डोला
0: सुपर भरे प्रेम रस रंग जे चाव साध के संग
1: शरण आन सब त्याग अंतर प्रगाश अंदिन लिवला
0: बड़ भागी जप्या प्रभ सोए नानक नाम प्रतिष्क होए
1: भक्ति मनसा पूरी भई सतगुरु ते निर्मल मत
0: जन को प्रभ होयो दयाल सेवक इन्नो सदा निहाल
1: काट मुकत जन भया जन्म मरण दुख भ्रम
0: इस पुण्य श्रद्धा सब पूरी रव रया सत्संग जुरी
1: साथ लिया मिलाए नानक भक्ति नाम
0: सो क्यों बिसरे जे काल न बनने सो को बिसरे जे किया जाने
1: सो क्यों
0: बिसरे जी अग्न में रखे गुरु प्रसाद को बिल्ला लाके
1: जन्म जन्म का टूटा
0: गुरु पूरे एक बजाया प्रभु प्राण नानक जन
1: संत करो एक काम आन त्याग जपो अर
0: सिमर

0: सितार अष्टपदी आप कथे आसन निहार आपे का विस्तार
1: जातिस भावेता से तो पाए अपने पाने ले समाए
0: तुम ते भिन्न नहीं किच होए अपन सुसाव जगत परोए
1: जगो प्रभु जो आप जाए सच नाम सोई जन पाए
0: सो समदसी तत कविता नान सकल शिष्ट का जित्ता
1: जनत सब ताके हाथ दीन दयाल नाथ को नाद
0: जिस राखिस कोई न मारे समुआज मनो बिसारे
1: इस जबर का को जाए सासिर एक निरंजन राय
0: की जुग जाके सभात अंतर बार जानो सा
1: दान बेअंता पार नानक दा सदा बलिहार
0: पूर्ण पूरे दयाल सब ऊपर होवत कृपा
1: अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो व्याप
0: प्रतपाल जीवन बपान जो जो रचियो सो तसे त्या
1: जिस भावे तिस ले मिलाए भगत करे हर के गुण गाए
0: मन अंतर विश्वास कर मान्या करनहार नानक एक जानिया
1: जानागार एक नाए तिसकी आस
0: सेव को सेवा मना हुक्म बूझ परम पद पाई।

नानक ते विश्राम देना है। नानक ते जन, ते दा मतलब ओ जन, ते दा अर्थ है ओ जिहड़े जन ने जिन्हां उत्ते मालक ने अपनी भगती दी दात बख्शी है, नाम मिले ओ नाम दे विच लीन हो जांदे आ, मन करके नाम विच एकमिक हो जांदे आ, ओ परमात्मा दा मिलाप हो जांदा है, उन्हां दा मनुखा जन्म सफला हो जांदा है। असी भरम भुलेखे च पै के मैं ना करिए कि मेरे हाथ है, साढ़े हाथ कुछ नहीं है, जो है परमात्मा दे हाथ है। इस गल नू समझ के अरदास करिए ते माड़ी संगत तो बच जाइए, माड़े कर्मां तो बच जाइए, जहर खाणी छड के अमृत खा लईए, अमृत पी लईए। समझण लई गुरबाणी दित्ती है वी समझ लो, जिन्हों समझ आ गई उन्हें अरदास कीती है कि वाहिगुरु जी मेरे पिछले अवगुण बख्श देना ते मैनू अगे समत सोझी देना ताकि मैं माड़े कर्म दोबारा ना करा, मैं माड़ी संगत विच ना पवां, जिदे नाल मेरा ये जन्म लोक सुखी है परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले हो जाए। तो अज दे शब्द राही महाराज ने समझाया कि परमात्मा दे हुकम विच चलो, अपने ते माण ना करो, ये सब कुछ उस मालक दियां दित्तियां दातां ने, उदा शुकराना करके उदे नाम रंग दे विच रंगे जाओ। पुल चुक दी खेमा महाराज सबना दी हाजरी लेखे लाउण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: सब सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मानियो जो प्रभु को मिल बोच है राज करेगा खालसा खुआर हुए सा मिलेंगे खुआर हुए सा मिलेंगे बोले सोनिहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी प्रेम पटुला तशदता टक्कण को पत मेरी दाना बिना साई मंडा नानक सार न जाना तेरी तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मन हर तक गुरु निसतारे सत नाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

जीव नाम सुने जो परसो परसन्ना पै गुरपुरे तब मेरी आस पुने जीव नाम सुने जो सुप्रसन्न पै गुरपुरे तब मेरी आस पुने रहाउ पीर गई मदे मन तिरा मोहे ओ आनंद तुनी

सिमरै अनेक मुनि अंदुले टेक नेर तन तन पायो प्राव नानक अनेक गुनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद।

सुन वड्डा खे सब कोए के वड्डा वड्डा डिठा होए कीमत पाए न कहया जाए कहने वाले तेरे रही समाए वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा किता केवड चीरा रहा सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई कह न जाई तेरी तिल वड्याई सब सत सब तप सब चंगियाइया सिद्धा पुरखा कियां वड्याइया तुद बिन सिद्धी किने न पाइया करम लै नाही ठाकर हाइया आखन वाला क्या विचारा सिफती भरे तेरे भंडारा जिस तू देह तिसे क्या चारा नानक सच सवारन हारा आसा महला पहला आखा जीवा मिसरे मर जाऊं अखनो अखा सच नाम सच नाम की लागे भूख उत भूख खाए चलिए दुख सो क्यों मिसरे मेरी माए साचा साहिब साचे नाई रहाऊ साचे नाम की तिल वड्याई आख के कीमत नहीं पाई जे सब मिलके आखन पाए वड्डा न होवे काटन जाए।

जात खसम विसारे ते कम जात नानक नावे बाज सनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनु करो गुरपास हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम प्रगास मेरे मीत गुरुदेव मुको राम नाम प्रगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीत हमरी रह रास रहाओ हर जन के फट भाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास

तेन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सतसंगत जित हर पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मंचत वह उदम जा। आहर हर जीव परे, सैल पत्थर।

जी सत संगत मिले सुतरेया गुरु प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहा जनन पिता लोक सुत बंता कोई न किसकी तरेया सिर सिर

पहला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम पारा सब त्याव ही।

आराम हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हरे को पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण वाख वखाना जो सेव है जो सेव है तू जी जन नानक तिन कुरबाना हर त्याव है हर त्यावे तू जी से जन जुग मैं सुखवासी से मुक्त पय जन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन निरपौ जन हर निरपौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेव्या जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत ते

तन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विसोड़िया आप मिलाया तू दरिया हो सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई ना है जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विसड़िया संजोगी मेल जिसन तू जानाई सोजन जाने हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेवया तिन सुख पाया।

मन एक न चेत समूढ मना हर विसरत तेरे गुनगल या रहाऊ ना हो जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरया आसा महला पंजवा भई प्राप्त मान खुदे हरिया गोविंद मिलन किए तेरी बरिया अवर का।

करमां कहो नानक हम नीच करमा शरण परे की रखो शरमा। पातशाही दशमी कबो वाच बेंती चौपई हमरी करो हाथ दरसा पूर्ण होए चित के साम तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो पत पारा हमरे दुष्ट स्व तुम काबो आप हाथ दे मुहे बचावो सुखी बसे मोर परिवारा सेवक सिख सबै कर।

प्यासा तुम्हें साढ़ कोई अवर ना त्याऊं जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे भरे मरण काल का त्रासन भरे हो जो सदा हमारे पसा श्री तुझ करे हो रसा रात

के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार ते सही को हमारी सकल प्रजा जनु आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पलम बद कियो कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पसानत चीटी ते कुंचर स्थूला सप्र कृपा दृष्कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पसान कट कट के पट पट की जान जब उद करख

सिमरत शास्त्र वेद सबे भेद कहे हम एक न जाने। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहे सब तो हे बखाने दोहरा।

मैं पाया ही मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना।

नाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रह करता तेरे सब किस है जिस देह सुपावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन सावे नाम जिन कै मन वसिया बाजे शब्द कनेरे कह नानक सचे साहिब क्या नहीं करते रह साचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आई वसिया जनेसा सब पुजाइया सदा कुर्बान।

अंधारों वाजे पंच सवदित कर सुपागे कर सुपागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत दिवस कीते काल कंठ कमारिया तुर करम पाए।

सगल समगरी तुम रे तुमते हो सो तुमरी गत मित नानक दास बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दशमी।

सजाए गए सजे हुए देवानंदर शब्द कीर्तन सोदर है राज साहब जी के पाठ की अरदास है जी अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी आप जिया दे दर ते समूह साध संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल पेटा वांदर प्रवान करनिया यात्रावां सफल करनिया।

0: सब सिखन को हुक्म है, गुरु ग्रंथ जी मान्यो। जो प्रभु को मिल बोच है, राज करेगा खालसा। खुआर हुए सा मिलेंगे, खुआर हुए सा मिलेंगे। बोले सोनिहाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम।

जो सो प्रसन्न पै गुरपुरे तब मेरी आस पुन्ने जीव नाम सुने जो सो प्रसन्न पै गुरपुरे तब मेरी आस पुन्ने रह।

उपजो चाओ मिलन प्रभ प्रीतम रहन ना जाए किन्नी अनेक भगत अनेक जन तारे सिमरै अनेक मुनि अंदले टेक निर तन तन पायो

परम सन्मान योग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा विच गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सत संगी जनों सतगुरु महाराज की पावन हजूरी विच जुड़ बैठ अदब प्यार सत्कार दे नाल कीर्तन रूप विच गुरबाणी का लाहा प्राप्त किया है। लड़ीवार गुर इतिहासक विचार धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी दे पावन इतिहास दे नाल जुड़न वास्ते जो समा प्राप्त हो रहा है मन बिरतियां नू एकागर करदे होए निमाणे जी होके समरथ सतगुरु जी दे पावन चरणा विच जुड़न दा यतन करिए। सभना दियां हाजरियां सतगुरु जी दे पावन चरणा विच लग जान। आप जी रोजाना इस अस्थान तो श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ दे राही कवि संतोख सिंह जी दे द्वारा दशमेश पिता अमृत के दाते सरबंस दानी बादशाह दरवेश शाही शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे पावन इतिहास नू लड़ीवार सरवन करदे आ रहे हो। गुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आनंदपुर साहिब पावन अस्थान ते सतगुरु जी आईयां होईयां सिख संगतां नू निवाजदे हन गुरमत दा उपदेश दिंदे ने। जीवन जीवन दी जाच सतगुरु जी सिखाउंदे हन बाणे और बाणी दे धारनी गुरु कियां संगतां गुरु चरणां दे विच आ के हुंदियां ने। दूसरे पासे जो जंग चल रही है बाई धार दे राजे जो अहंकार दे नाल भरे हुए ने क्योंकि झगड़ा हुंदा ही उत्थे है जिथे अहंकार अगे आ जांदा है। राजा भीम चंद कहलूरी राजा बाई धार दे राजियां नू नाल लैके अपने सिपाहियां नू नाल लैके और दूसरे पासे सूबा सरहंद वजीर खां ते उहदी सेना नू नाल रला के गुरु महाराज जी ते गुरु के चढ़दी कलां वाले जिहड़े सिंह ने उहनां दे नाल ये जंग जिहड़ी है वो चल रही है। गुरु महाराज जी ने लोहगढ़ दा किला भी छड़ दिता खुले मैदान दे विच ने। इन्हां दे मनां दे विच इक भरम सी कि हुण गुरु गोबिंद सिंह जी हार जाणगे और इन्हां दे जिहड़े घट गिणती दे सिंह ने वह असी मार मिटावांगे क्योंकि सूबा सरहंद वजीर खां हुण साडी मदद करन वास्ते पहुंचिया पर वजीर खां भी बहुत हैरान है कि हुण तक मैं बड़ियां जंगां लड़ाइयां कीतियां भी ते सुनियां भी बड़ियां बारे है पर अज जिहड़ी मैं जंग देख रहा ना ऐसी जंग कदे मैं सुनी है ते ना मैं एहो जी जंग कदे कीती है कि एक पासे हजारां लखां दे सिपाही होण और एक पासे गिणती दे सिंघ होण और फिर भी उन्हां दा पलड़ा भारी है। असी हजारां लखां सिपाही इकट्ठे करके भी इन्हां उत्ते अपना जोर नहीं पा सके इन्हां ते अपना दबदबा नहीं बना सके। इस गल तों भी वो हैरान है।
ਹੁਣ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਤਲੁਜ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਅਗਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਸਰਵਨ ਕਰੋ।

आप नहीं डिग गए जमीन ते, उन्ना चेर उन्हां दा हाथ नहीं रुकिया, तलवार चलदी रही, चलदी रही तलवार, क्योंकि हुण जख्म ही इन्ने ज्यादा हो गए सी। आपां चमकौर साहब की जंग याद कर लीए, वह सीन सामने ले आईए, बाबा अजीत सिंह जी दे किन्ने जख्म ने, विद्वान कहिंदे 300 तो वध ही ने, पर उन्ना चिर वह लड़दे रहे मैदान दे विच, पिठ नहीं कीती, मूँह नहीं फेरिया, कहिंदे उन्ना चिर लड़दे रहे जिन्ना चिर वह जमीन ते आके बाबा अजीत सिंह जी गिरदे नहीं आ, उन्ना चिर उन्होंने कहिंदे वार वैरियां दे उत्ते कीता है। इसे तरह भाई साहब जी दे बारे कहिंदे जब लो गिरेओ ना अवनी ऊपर, जदों तक जमीन दे उत्ते नहीं डिगे तब लो खड़ग पर हारे।

सार ना जाना तेरी सब ते मड्डा सत गुरु नानक जिन कल राखी मेरी सत नाम श्री वाहिगुरु साहिब जी मिलावल महला पंजवा जीव नाम सुनी जो सो प्रसन्न पै गुरपुरे तब मेरी आस पुन्नी जीव नाम सुनी जो सो प्रसन्न पै गुरपुरे तब मेरी आस पुन्नी रहाओ फिर गई बादी मन तेरा मोहे अनद तुनी उपजे चाओ मिलन प्रभु प्रीतम रैन न जाए किन्नी अनेक भगत अनेक जन तारे सिमरै अनेक मुनि अंधले टेक निरतन तन पायो प्रभु नानक अनेक गुनी अनेक भगत अनेक जन तारे

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाही। माया मोह परम पै पुले, सुत दारा सो प्रीत लगाई।

सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो बलै छलन सबल मलन भगत फलन कान कुअर नह कलंक बजी डंक चढ़ू दल रवंद जियो राम रवन दुर्त दवन सकल पवन कुशल करन सर्व भूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जरम करम मच्छ कच्छ हो बुरा जमुना के कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो नाम सार ये तार

0: फिरत सगल जुग कभू कै को पावे आत्म परगास को वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे जाको शिव मुन गहनत जात कबिलास को जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटाजूट पेख किए फिरत उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी नाम की बड़ाई दई गुर रामदास को
1: समरथ गुरु सिर हाथ तरयो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अगन हरयो निसबासुर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत पान डरयो पन दास आस जगत गुरु की पारस पेट परस करयो रामदास गुरु हर सत कियो समरा

0: दियन गुर रामदास। प्रथम नानक चंद जगत पयो आनंद, तारन मनुख जन कियो परगास। गुर अंगद दियो निदान, अकथ कथा ज्ञान। पंच पूत बस कीने जमत नात रास। गुर अमर गुरु श्री सत, काल जुग राखी पत। अगन देखत गत चरण कवल जास। साबिद मान्यो मन तब ही पयो प्रसन्न। राज जोग तखत दियन गुर रामदास।
1: नाम निदान ध्यान अंतर्गत, तेज पुंज त्यो लोक प्रगासे। देखत दरस पटक भ्रम भजत, दुख पर हर सुख सहज बिगासे। सेवक सिख सदा अत लुभित, आलस मुह ज्यो कुसम सुबासे। विद्यमान गुर आप थप्यो थिर, साचो तखत गुरु राम दास। जिह सतगुर सिमरंत, नैन के तिमर मिटह खिन। जिह सतगुर सिमरंत, हृदय हर नाम दिनो दिन। जिह सतगुर सिमरंत, जी की तपत मिटावे। जेहे

दारू पी इस माहे कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए। नानक कहे सुनो जनो, नानक कहे सुनो जनो, इत संजम दुख जाए पड़ी सेवक सतों खई।

0: स्वस्थ तिस तिस जीवन पग नानक सच्चे नाम बिन कटिका क्या तग महला पहला।
1: लख नेकियां चंगियां या लख पुन्ना प्रवान लख तप उपर तीर्थां सहज जोग बेबान लख सुरतन सिंह राम।